जिनको झूमर के हो रहा तारा ओय ओय ओय गोली भन्दा तिम्रो या जन्मारा जिनको झूमर के